0: পশ্চিমবঙ্গের নদী ও সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাঁদের জন্য কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা একটু পরেই। সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি থেকে সংবাদ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर

0: कर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. A correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited candidates, selected from across the country, will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio will arrive in Kolkata today on a four-day visit to India. This will be his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He

जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप

0: ভজন পরিবেশন করলেন শিল্পী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়। একটু পরেই খবর দিল্লি থেকে।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রুয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढ़ीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुं आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्तराष्ट्रसङ्घे तथा यूरोपीयसङ्घे च निर्दिष्टानाम् आतङ्कवादिनाम् आतङ्किसङ्घटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषत् प्रतिबन्धसमित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतङ्किसङ्घटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढ़ीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश

0: जो की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री बेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. Indian Army officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been selected for the prestigious 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year Award. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड

0: राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और

0: वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे 100% त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है,

0: प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। NCERT की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments including ministries of railways, home affairs, health and family welfare and department of higher education among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. US Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, 297.6 मीटर्स यानी 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर यह है चैनल संचयिता। 9:19 और 30 सेकंड्स में देवजानी आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम रसधारा में, जिस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं या सुन सकते हैं। रसधारा में आज हम बातें करेंगे संतुलित आहार और सुस्वास्थ्य के बारे में। कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, लेकिन आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम अक्सर अपने खान पान पर सबसे कम ध्यान देते हैं। कभी समय की कमी, कभी स्वाद का लालच, तो कभी फास्ट फूड का आकर्षण, और धीरे धीरे शरीर देने लगता है कई बीमारियों के संकेत। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे संतुलित आहार और स्वास्थ्य की, जानेंगे कि सही भोजन किस तरह हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और पूरे जीवन को प्रभावित करता है। और इस सफर में हमारा साथ देंगे कुछ खूबसूरत गीत।

0: नकली तोड़ा मारा था, असली तोड़ा हमसे सुनो।
1: सही काम तो सही तब सही काम तो सही तब सही काम तो सही तब

0: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम रसधारा देवजानी के साथ और आज हम बातें कर रहे हैं संतुलित आहार और सुस्वास्थ्य के बारे में। संतुलित आहार यानी एक ऐसा भोजन जिसमें शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगा खाना ही पौष्टिक होता है, जबकि सच ये है कि हमारी पारंपरिक भारतीय थाली अपने आप में संतुलित आहार का बेहतरीन उदाहरण है। दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, दही, सलाद, मांस, मछली, ये सब मिलकर शरीर को आवश्यक पोषण देते हैं। आजकल बच्चे जंक फूड की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। स्वाद तो मिलता है लेकिन पोषण नहीं। यही कारण है कि कम उम्र में मोटापा, मधुमेह और थकान जैसी समस्याएं बढ़ रही है।
1: समझो और समझा।

क्या आपने कभी महसूस किया है कि अच्छा भोजन आपका मूड भी अच्छा कर देता है? दरअसल भोजन का सीधा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी है। ताजे फल, सूखे मेवे और हरी सब्जियां दिमाग को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। वहीं अत्यधिक तला भुना और प्रोसेस्ड फूड शरीर में आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि समय पर भोजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छा भोजन करना। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि हर उम्र के लिए अलग अलग पोषण तत्व

की ज्यादा जरूरत शरीर में होती है और इसका सबसे अच्छा उपाय है किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से सलाह कर लेना। कहते हैं कि 30-35 के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी दिखाई देती है और तभी उन्हें बाहर से कैल्शियम लेने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह एक उम्र के बाद हर इंसान को मल्टीविटामिन की दवाइयां लेने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट, दवाई नहीं सप्लीमेंट। पर ये सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ ये हो जाता है कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप जो रोज़मर्रा की जिंदगी में जो भी आप खाना पोषण तत्व ले रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो बेशक आप किसी डाइटिशियन या डॉक्टर से परामर्श करें।

हम भोजन की बात तो करते हैं, लेकिन पानी को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, त्वचा स्वस्थ रहती है और पाचन भी बेहतर होता है। गर्मी के मौसम में विशेष रूप से पानी, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे पेय बेहद लाभदायक होते हैं। पर यह याद रखें कि पानी भी जरूरत से ज्यादा ना पिए, इससे किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। तो मतलब ये कुल मिलाकर कि आप जो भी करें उसे सही तरीके से करें।

17 जून 2026 को पूर्वान्ह 11:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1 जून 2006 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या 0332212061 या फिर 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। घोषणा समाप्त हुई।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हर हसीन चीज है, यानी जो चीज देखने में खूबसूरत हो जरूरी नहीं है कि आपके और हमारे सेहत के लिए भी वो अच्छी ही हो। ज्यादातर देखने में या खाने में उतनी जो अच्छी चीजें नहीं होती है वही हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मसलन कड़वा जो बिटर सब्जियां होती है, यानी कि करेला या फिर नीम के पत्ते या फिर सब्जियां, हरी सब्जियां जो बहुत लोगों को नहीं भाती हैं, मसाले कम देकर अगर आप पकवानों को बनाएं तो वो आपके और हमारे शरीर के लिए बेहद अच्छा होता है। आज फिर से लोग मोटे अनाज यानी मिलेट्स की ओर लौट रहे हैं। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज अब सुपर फूड कहलाने लगे हैं। हमारे दादा दादी जिन चीजों को रोज खाते थे, विज्ञान आज उनकी उपयोगिता फिर साबित कर रहा है। घर का सादा भोजन शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, कॉफी से करते हैं या पानी से करते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। और हाँ, अगर आपकी थाली में रोज रंग बिरंगी सब्जियां हैं तो समझिए आपका भोजन काफी हद तक संतुलित है। याद रखिए, स्वस्थ जीवन इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस सही खान पान, नियमित दिनचर्या और थोड़ी सी जागरूकता काफी है। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन का नाम भी है। इसी संदेश के साथ मैं देवजानी लेती हूँ आज के

0: रसधारा कार्यक्रम से इजाजत। दोबारा वापस लौट कर आऊंगी लेकर मैगजीन कार्यक्रम सुरभि दिन के ठीक 12 बजे। तब तक ये गीत आपके नाम कर जाती हूँ। सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:16 और 21 सेकेंड हो रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल संचेता पर आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, और मैं हूं आपकी रूबरू, आपकी हर दिल अजीज दोस्त शायस्ता नाज। आप सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। सामीन करा, सबसे पहले पेश है आईना, जिसमें आप समाप्त फरमाएंगे इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला यानी आलमी योम जच्चा और बच्चा फिस्टूला पर गुफ्तगू। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में आलमी योम जच्चा और बच्चा फिस्टूला मनाया जा रहा है। हर साल 23 मई को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख्वातीन में इस बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना है और उनके खात्मे के लिए कोशिश करना है। दोस्तों, जच्चा और बच्चा फिस्टूला एक ऐसी तेबी पेचीदगी है जो अमूमन मुश्किल और तवील जच्चगी के दौरान पैदा होती है। इस बीमारी की वजह से ख्वातीन को जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ जहनी और समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। माहरीन के मुताबिक हर वक्त तिबी सहूलियात, महफूज जच्चगी, तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स और मुनासिब देखभाल से इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। हमें चाहिए कि हामला ख्वातीन के सेहत का खास ख्याल रखें और किसी भी पेचीदगी की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें। आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि ख्वातीन की सेहत, इज्जत और बेहतर ज़िंदगी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद होती है। जच्चा और बच्चा फिस्टूला अमूमन उस वक्त पैदा होती है जब जच्चगी के दौरान मुनासिब तिबी सहूलतें मौजूद ना हों और डिलीवरी में बहुत ज़्यादा देर और पेचीदगी हो जाए। इसके नतीजे में ख्वातीन को शदीद तकलीफ और कई बार शर्मिंदगी और तन्हाई का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि ये बीमारी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज और काबिल रोकथाम है। अगर हर वक्त इलाज, महफूज जच्चगी और माहिर डॉक्टर की निगरानी हासिल हो तो इस मसले से बचा जा सकता है। आज के इस अहम दिन पर हम सब यह अहद करते हैं कि हम ख्वातीन की सेहत के बारे में शऊर बढ़ाएंगे, महफूज जच्चगी को फ़रोग देंगे और हर माँ की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का आईना जिसमें आप समाप्त फरमाए थे इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला यानी आलमी योम जच्चा और बच्चा फिस्टूला पर गुफ्तगू। दोस्तों, अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आपकी समातों के हवाले करती हूँ एक खूबसूरत सा नगमा, हर किसी को नहीं मिलता।

दोस्तों अभी आप समाज फरमा रहे थे मनहर और साधना सरगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म का नाम था जावाज, कलाम था इंदीवर और फारूक कैसर का, मौसीकी से सजा था कल्याणजी आनंद जी ने। दोस्तों वक्त हो चला है हफ्त रोज़ा प्रोग्राम शहरनामा का, जिसमें आप सुनेंगे समाजी अदबी और सकाफती प्रोग्रामों का सिलसिला। तो पेश है शहरनामा। सबसे पहले पेश है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर गुफ्तगू। दोस्तों हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है ताकि लोगों में इस बीमारी के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। जब खून की रवानी शरियानों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालती है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। आमतौर पर एक सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर 120-80 mmHg

केस आसपास समझा जाता है, अगर ये मुसलसल ज्यादा रहे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये बीमारी अक्सर बगैर कई वाज़ेह अलामत के बढ़ती रहती है, इसलिए इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। अगर हर वक्त इलाज ना किया जाए तो दिल की बीमारी, फालिज, गुर्दों की खराबी, आंखों की कमजोरी जैसे संगीन मसाइल पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन की कई वजहें हो सकती हैं। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ, वर्जिश की कमी, जहनी दबाव, तम्बाकू नोशी, मोटापा, नींद की कमी, इन सब वजहों की वजह से हाइपरटेंशन के अमराज आ सकते हैं। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में ये अवामल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से नौजवान भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगरचा कई बार कोई अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन बाज़ लोगों में ये अलामत देखी जा सकती हैं। सरदर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज़ होना, थकन महसूस होना, ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि चंद आसान एहतियाती तदाबीर अपना कर हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। रोज़ाना वर्जिश करें, नमक कम इस्तेमाल करें, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, सिगरेट और तंबाकू से दूर रहें, जहनी दबाव कम करें, वक्तन फ़ौक्तन ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ये पैगाम देना है कि अपना ब्लड प्रेशर जानने सेहतमंद ज़िंदगी अपनाइए। दुनिया भर में तिबी अदारे मुफ्त जांच कैंप, मेदारी प्रोग्राम और सेमिनार मुनक़द करते हैं, ताकि लोग इस बीमारी के खतरात से वाकिफ हो सकें। सेहत एक बड़ी दौलत है, एक नेमत है कुदरत का। अगर हम मतवाजन ग़ज़ा, वर्जिश और सेहतमंद आदात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो न सिर्फ हाइपरटेंशन बल्कि कई बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अब बात करते हैं आलमी यौम एड्स वैक्सीन की। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया है। इस बीमारी का सबब HIV यानी कई तरह के वायरस होते हैं, जो इंसान के जिस्म के दाफ्ती निज़ाम को कमज़ोर कर देता है। अगर हर वक्त इलाज ना हो तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, हर साल 18 मई को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, यानी आलमी यौम एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों में HIV और एड्स से बचाव, तहकीक और वैक्सीन की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके। आलमी यौम एड्स वैक्सीन मनाने का मकसद सिर्फ बीमारी के खतरात बताना नहीं, बल्कि इस बात पर जोर देना भी है कि साइंसदान मुसलसल एक मौसर वैक्सीन की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर की मुख्तलिफ तिबी तंजीमें, तहकीकी अदारे और हुकूमती इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जो HIV से मुकम्मल तहफ़ फ्राहम कर सकें। इस दिन उन साइंसदानों, डॉक्टरों, रज़ाकारों, मरीजों की खदमात को भी खराज तहसीन पेश किया जाता है, जो इस जद्दोजहद में शामिल है। ये जानना ज़रूरी है कि HIV कैसे फैलता है। ये वायरस अमूमन गैर महफूज खून की मुंतकली से, आलूदा सिरिंज के इस्तेमाल से, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से और मुतासरा माँ से बच्चे में मुंतकल हो सकता है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि ये बीमारी हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाना खाने या आम मेल जोल से नहीं फैलती। इसलिए HIV से मुतासर अफराद के साथ नफरत या इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। आज जदीद तिब की बदौलत ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनसे HIV के मरीज़ एक बेहतर और तवील ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हर वक्त जांच और इलाज हो जाए तो वायरस के असरात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि मुस्तकिल हल एक मौसर वैक्सीन ही हो सकती है, इसलिए दुनिया भर में तहकीक जारी है। आलमी यौम एड्स वैक्सीन हमें ये पैगाम देता है कि एहतियाती इख्तियार करें, सही मालूमात हासिल करें और मुतासर अफराद के साथ हमदर्दी और तआवुन का रवैया अपनाएं। सामीन, नौजवान नस्ल में बेदारी पैदा करना बेहद ज़रूरी है। तालीमी अदारों, समाजी तंजीमों और मीडिया को चाहे कि वो HIV और एड्स मुतालिक सही मालूमात आम करें, ताकि गलत फहमियाँ दूर हों। हम किस सब की जिम्मेदारी है कि महफूज तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, इस्तेमाल शुदा सरिंज से परहेज़ करें, खून की मुंतकली से पहले इसके जांच यकीनी बनाएं और अगर ज़रूरत हो तो तिबी मशवरा लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। आलमी यौम एड्स वैक्सीन में हमें उम्मीद, तहकीक और इंसानियत का पैगाम देता है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और इस तरह के मरीजों के साथ हमदर्दी जताएं और उनके साथ मेल जोल रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूज़ियम की।
عالمی یوم اجائب

घर, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। दोस्तों हर साल 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी आलमी यौम अजायब घर मनाया जाता है ताकि लोगों में अजायब घरों की अहमियत और तारीखी वर्से के तहफ़ के बारे में शऊर पैदा की जा सके। म्यूजियम ऐसी जगह है जहाँ कदीम तारीखी अशिया, फ़नून लतीफ़ा, साइंसी जदादात और तहजीबी वर्सा महफूज किया जाता है। ये सिर्फ पुरानी चीज़ों के ज़खीरे नहीं, एक माजी और हाल के दरमियान एक मजबूत पुल है। जब हम किसी अजायब घर में दाखिल होते हैं तो हमें सदियों पुरानी तहजीबों, बादशाहों, साइंसदानों, फ़नकारों और आम इंसानों के ज़िंदगी के नक़ोश देखने को मिलते हैं। ये मकामात हमें अपने जड़ों से जोड़ते हैं और तारीख को ज़िंदा रखते हैं। आलमी यौम अजायब घर मनाने का आगाज़ 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की जानिब से किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद ये पैगाम देना है कि अजायब घर मुआशरे की तरक्की, तालीम, तहकीक और सकाफती हमाहंगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हर साल इस दिन के लिए एक ख़ास मौजू मुंतखब किया जाता है जिसके तहत दुनिया भर के अजायब घरों में नुमाइशें, सेमिनार, वर्कशॉप्स और सकाफती प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। हिंदुस्तान अपनी कदीम तहजीब और मतनू सकाफत की वजह से दुनिया भर में मशहूर और यहाँ की अजीम अजायब घर मौजूद हैं। दोस्तों इंडियन म्यूज़ियम जो कोलकाता में वाक़ है और उसे हिंदुस्तान का कदीम तरीन और सबसे बड़ा अजायब घर मनाया जाता है। यहाँ कदीम मुजस्मे, तारीखी सिक्के, नवादरात और नायाब आसार मौजूद हैं। इस तरह नेशनल म्यूज़ियम भी तारीखी वर्से का एक अहम मरकज़ है जहाँ हिंदुस्तानी तहजीब की झलक नुमाया तौर पर नज़र आती है। अजायब घर की काफ़ी अहमियत होती है, सिर्फ सियाती मकामात नहीं होते ये बल्कि तालीमी अदारे भी हैं। तलबा यहाँ आकर तारीखी, साइंस, आर्ट और सकाफत के बारे में इल्म मालूमात हासिल करते हैं। ये अदारे नई नस्ल को ये एहसास दिलाते हैं कि अपने माजी को महफूज रखा कितना ज़रूरी है। अगर तारीखी वर्सा महफूज ना रहे तो आने वाली नस्लें अपनी शनाख्त को खो सकती हैं। आज के डिजिटल दौर में भी अजायब घरों की अहमियत कम नहीं हुई बल्कि बहुत से म्यूज़ियम और टूल्स ऑनलाइन नुमाइशों के ज़रिए दुनिया भर में लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि तारीखी मकामात और अजायब घरों का एहतराम करें, वहां मौजूद अशिया को नुकसान ना पहुंचाएं और अपनी नई नस्ल को भी इन मकामात की अहमियत से आगाह करें। वालदीन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को अजायब घरों की सैर करवाएँ ताकि उनमें इल्म, तहकीक और तारीख से दिलचस्पी पैदा हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं बैन अल-क़ौमी यौम चाय डे की यानी इंटरनेशनल टी डे। दोस्तों चाय बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, यानी अगर चाय ना हो तो फिर क्या कहने कि कुछ फीका फीका सा लगता है और कुछ कमी सी लगती है ज़िंदगी में। दोस्तों आज ये बात करेंगे चाय एक ऐसी मशरूब है जो दुनिया भर में मोहब्बत, मेहमान नवाजी और ताजगी की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, आज का मौजू है बैन अल-क़ौमी यौम चाय। हर साल 21 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल टी डे यानी बैन अल-क़ौमी यौम चाय मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद चाय की अहमियत को उजागर करना, चाय के किसानों और मजदूरों की मेहनत को सराहना और चाय की सनत से वाबस्ता लाखों लोगों के मसाइल और हकूक पर रोशनी डालना है। चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो, मेहमानों की आमद हो, दोस्तों की महफिल हो या थकन भरा दिन, एक कप चाय हर मौका को खुशगवार बना देता है। हिंदुस्तान और तकरीबन हर मुल्क में जैसे ममालिक हो जाए चाय नहायत मकबूल है। ख़ास तौर पर बरसगीर में तो चाय जज्बात, मोहब्बत और रिश्तों की पहचान बन चुकी है। चाय की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि चाय का आगाज़ हज़ारों साल पहले चीन में हुआ और फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँची। वक्त के साथ चाय ने मुख्तलिफ जायके और अंदाज़ अख्तियार किए। कहीं दूध वाली चाय पसंद की जाती है, कहीं सब्ज चाय तो कहीं कहवा, और हर पल टी को तरजीह दी जाती है। माहरीन के मुताबिक मुनासिब मकदार में चाय पीने से जिस्म को कई फ़वाद हासिल होते हैं। चाय जहनी ताजगी देती है, थकन कम करती है और बाज़ अकसाम की चाय सेहत के लिए भी मुफीद समझी जाती है। ताहम हर चीज़ के तरह इत्तेदाल ज़रूरी है। बैन अल-क़ौमी यौम चाय हमें ये याद दिलाता है कि चाय के बागात में काम करने वाले लाखों मजदूर सख्त मेहनत करते हैं ताकि हमारी मेज़ तक खुशबू भरा एक कप चाय पहुँच सके। इसलिए हमें उनकी मेहनत और हकूक का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन मुख्तलिफ मकामात पर चाय से मुतालिक तकरीबात, सेमिनार्स और आगाही प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। लोग

0: से आ की आवाज निकलती है, वाव से ओ या ऊ की आवाज निकलती है, और ये जो छोटी या है इससे ई की आवाज निकलती है। अब यही आवाज जो है ये कोई भी लफ्ज बगैर आवाज के हम बोल ही नहीं सकते। जैसे मिसाल के तौर पर सिर कहा तो सिर में से के नीचे जेर है, तो ये छोटी या है, छोटेर जो है वो छोटी या की नुमाइंदगी करता है। तो ये अलीफ वाव ये जो है असल में जबर पेश और जेर की नुमाइंदगी करता है। ये जबर पेश और जेर क्या है, ये असल में एक पहचान है, एक इलामत है। ये जबर जो है वो आ की पहचान है, मतलब आ की आवाज को जबर जबर करार देते हैं, ओ या ऊ की आवाज को पेश करार देते हैं।
1: किसी भी हर्फ के ऊपर अगर वो एक टेढ़ी डंडी जैसी रहती है तो उसे हम लोग जबर कह सकते हैं।
0: जी अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया, तो ये भी जाहिर है बिल्कुल बताना चाहिए कि ये जबर जो है ये दरअसल एक छोटी सी लकीर है जो हर्फों के ऊपर में होती है
1: जी,
0: और जेर जो है ये भी एक छोटी सी लकीर है जो हर्फों के नीचे में होती है, और पेश जो है ये आप इसको नाइन जो अंग्रेजी के नंबर है नाइन,
1: या फिर कॉमा जो अंग्रेजी में लगाते हैं।
0: हाँ, कॉमा को भी आप मान लीजिए, तो कॉमा ये भी हर्फ के ऊपर में लगता है तो इसको पेश कहते हैं। अब पेश की आवाज जो है जैसे बताया ओ या ऊ,
1: ऊ और ओ की आवाज,
0: हाँ, जबर की आवाज आ, जेर की आवाज ई। अब यही आवाज तो है जितने भी लफ्ज हैं उसमें ये आवाज रहेगी। जैसे सर, सर कहा तो इसमें जबर की आवाज है, ये अलीफ की नुमाइंदगी करता है। गुम कहा तो इसमें पेश की आवाज है, वाव की नुमाइंदगी करता है। सिर कहा तो ये जेर की आवाज है और ये छोटी या की नुमाइंदगी करता है। तो यही वजह है कि उर्दू में अलीफ वाव और ये को वाविल इसीलिए कहते हैं कि इन आवाजों के बगैर हम कोई लफ्ज पढ़ नहीं सकते। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर हिंदी का एक लफ्ज लिखते हैं किताब,
1: जी
0: ठीक है, ये लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए इसको पढ़ो तो आदमी क्या पढ़ेगा। अगर ये लफ्ज किसी ने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो इसको वो देखेगा तो किताब पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, किताब पढ़ सकता है, ये तो कोई भी आवाज निकाल सकता है। लेकिन जैसे हिंदी में जितने भी मात्राएं होती हैं, हिंदी को ले लीजिए, जो इस तरह से हिंदी जब हम लिखते हैं तो छोटी इकार है तो बाएं तरफ में लिखते हैं तो इससे छोटी ई की आवाज आती है, और हिंदी के इस शब्द के आखिर में जो दाएं तरफ से जो ईकार है तो इसमें खींच के आवाज निकालते हैं। तो ये हिंदी हो या बंगला हो, इसमें क्या है कि हम जो भी लिखते हैं वही पढ़ते हैं। उर्दू में जरा सा उसमें कुछ दुश्वारी यह है कि ये जबर जेर पेश उसको लिखा नहीं जाता है, लिखने से टाइम लगता है, तो बगैर जबर पेश लिखे हम लोग लफ्ज लिख देते हैं, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तब उसमें मतलब जो उसको कहते कि हिज्जे करना, तो काफ जेर की ते अली जबर ता बे माकूफ किताब, इस तरह से अब उसको पढ़ाया जाता है
1: जी। जब बच्चों को सिखाना होता है तो फिर हम उसको पहले अराब को लिख कर समझा सकते हैं कि जबर कहाँ लगता है और जेर का इस्तेमाल कैसे होता है, पेश का इस्तेमाल कैसे होता है। तो इस तरह से बच्चों को सिखा या बच्चे हों या बड़े हों, किसी को भी सिखाने की शुरुआत की जाती है तो अराब का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो धीरे धीरे बाद में क्या अराब को हटा दिया जाता है लिखने के लिए?
0: हाँ, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पहली दफा कोई भी जबान आदमी सीखता है तो लेटर सीखता पढ़ता है, उसके जो हर्फ होते हैं, उसके जो अक्षर जिसको हिंदी में कहते हैं ये पढ़ते हैं, का खा गा घा गा, ये सब तो पढ़ते हैं। उर्दू में भी अलीफ बे पे ते ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद फिर उर्दू का दूसरा लेसन जो होता है तो उसमें फिर वो जबर जेर पेश के साथ पढ़ना पड़ता है, यानी अलीफ के ऊपर जबर लिखते हैं और उसको आ पढ़ते हैं, अलीफ के नीचे जेर लिखते हैं तो उसको ई पढ़ते हैं, अलीफ के ऊपर पेश लिखते हैं तो उसको ऊ पढ़ते हैं। उसी तरह से बे पे ते जितने भी हर्फ हैं सब के साथ जबर जेर पेश ये लगा के उसको फिर पढ़ा जाता है। तो जैसे जबर बे जबर बा, बे जेर बी, बे पेश बू, उसी तरह फिर दूसरा हर्फ आता है ते, तो ते को भी मतलब पे अगर आ गया तो पेज को पे जबर पा, पे जेर पी, पे पेश पू, तो इस तरह करके अलिफ से या तक जबर जेर पेश के साथ पढ़ा जाता है ताकि उसकी आवाज जमीन में आ जाए। वो आवाज निकालने के लिए जैसे कलम, कलम जो है तो इसमें काफ के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जबर है, तो ये आवाज निकालने के लिए ये हर्फों का मतलब ये जो एराब जिसको कहते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में भी इसी

0: रन लिख लेता है। हिंदी और बंगला में पूरा पूरा अक्षर रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं, हिंदी को ही ले लीजिए, कि किसी किसी अक्षर को छोटा करना पड़ता है
1: जी।
0: जैसे आप ये मिसाल के तौर पर हिंदी ही ले लीजिए, हिंदी में जो ना है इसको छोटा कर दिया गया है, है ना। उसी तरह से बंगला में स्वस्थ तो उसमें सौ को छोटा कर दिया गया है। तो ये जो छोटा करना पड़ता है ये काहे करना पड़ता है, तो वो तलफ्फुज के लिए उसकी
1: पूरी आवाज नहीं
0: निकालनी है, आवाज पर ही डिपेंड करता है,
1: आवाज के उतार चढ़ाव पर डिपेंड
0: करता
1: है।
0: हाँ, अब उसी तरह से उर्दू में भी जब हम लिखने जाते हैं तो पूरा पूरा लफ्ज नहीं, हर्फ नहीं लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, आप कलम ले लिया, जैसे भी कहा कलम, तो ये बना है काफ लाम मीम। अब ये काफ लाम मीम को अलग अलग हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है
1: जी।
0: अब पढ़ने में भी दुश्वारी होती है, तो इसीलिए अब कर दिया जाता है कि काफ को छोटा कर दिया जाता है, लाम को छोटा कर दिया जाता है, और मीम को भी, मीम को आखिर में जो हर्फ रहता है वो पूरा रहता है। तो अब ये लेसन फिर आता है, ये सबक आता है ये आपका, कि उर्दू के हर्फों को छोटा कैसे किया जाता है, उसकी सूरत क्या हो जाती है। ये तो हम लोग फिर बाद में इसको भी पढ़ते हैं हुरूफ़ इल्लत के बारे में, लेकिन मैं अभी इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
1: हुरूफ़ इल्लत की कुछ मिसालें और
0: हाँ, मैं हुरूफ़ इल्लत बताया, ये हुरूफ़ इल्लत जैसे बताया कि वावल को कहते हैं, और अलीफ वाव ये जो ये तीन हर्फ हैं तो ये असल में ज़बर ज़ेर और पेश की आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसको हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जैसे माई, अब माई में ना ए है, ए ई आई ओ यू कुछ नहीं है, तो फिर इसको वावल क्यों कहा, तो वाई है, वाई को सेमी वावल कह लेते हैं। तो उर्दू में हे जो है गोल हे, जो गोल मतलब जीरो की तरह हे, एक हर्फ है हे जिसको जीरो की तरह लिखा जाता है, तो इसे जो है हम सेमी वावल करार दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट हर्फ है, और इस हर्फ का ये, इसको तीनों को मिला के और ये हे को मिला के जो चार हर्फ है, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। क्योंकि जैसे बताया कि उर्दू में हिंदी के का भी व्याकरण शामिल है और अरबी और फारसी का भी शामिल है, तो हम जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें इन हर्फों का बड़ा अहम रोल नज़र आता है।
1: सर, हमारे समीन को कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ करने के लिए बता दें।
0: होमवर्क के तौर पर तो ऐसा है कि जो लोग उर्दू पढ़ रहे हैं शुरू में
1: जी,
0: तो हिंदी वाले काखा गाखा पढ़ते हैं, बंगला वाले भी काखा गाखा पढ़ते हैं, उर्दू में वाले को भी अलीफ बे पे ते पढ़ना चाहिए
1: जी।
0: और पढ़ने के बाद इस लेसन में तो यही है कि हुरूफ तहजी जो कहा कि अलीफ से लेके या तक, तो पूरा पढ़ना भी होगा और उनकी शक्लों को अपने दिमाग में रखना भी होगा
1: जी।
0: ताकि हम जैसे का की क्या सूरत है, घा की क्या सूरत है, तो उसी तरह से उर्दू के भी शब्दों की, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है, उसका जो शेप है, उसको जहन में रखना पड़ेगा ताकि हम उसको पहचान सके।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे सामीन को कि उसको समझना जरूरी है, और समझने और सीखने के लिए हमें मश्क करना जरूरी है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी उर्दू लेसन, जिसे पेश कर रहे थे अशरफ अहमद साहब। ये प्रोग्राम पहले भी नशर किया जा चुका है। दोस्तों, वक्त चला है अगले नगमे का, तो चलिए आपकी समातों के हवाले करती हूँ ये खूबसूरत सा नगमा चांद सिफारिश, शान और कैलाश खेर की आवाज़ में।

आवाज़ें थी शान और कैलाश खेर की। फिल्म का नाम था फना। कलाम था प्रसून जोशी का और मौसीकी से सजाया था जतिन ललित ने। दोस्तों, वक्त चला है इस प्रोग्राम का आखिरी नगमे का, तो चलिए सुनते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी नगमा वो तसव्वुर, उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा। फिल्म का नाम था इतराज, कलाम था समीर का और मौशी की जे सजाया था हिमेश शर्मा ने। दोस्तों अब वक्त हो चला है अगले प्रोग्राम का, अपने दोस्त शाइस्तों को दीजिए इजाज़त। आदाब।

यह चैनल संचयिता। 12:55 मैं देवजानी आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं कार्यक्रम सुरभि में। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। सुरभि में सबसे पहले चर्चा है और उसके बाद पहल चर्चा है में हमारा विषय है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला और पहल में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

हर वर्ष 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति नालवरण उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्या ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके उपचार व रोकथाम के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक कठिन प्रसव होने और समय पर उचित चिकित्सा न मिलने के कारण जन्म नली तथा मूत्राशय या मलाशय के बीच छेद बन जाता है। इससे महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है उसका स्वास्थ्य उसका अधिकार, फिस्चुला मुक्त भविष्य की दिशा, यानी हर हेल्थ हर राइट, शेपिंग अ फ्यूचर विदाउट फिस्चुला। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हर महिला को सुरक्षित मातृत्व, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर उपचार के माध्यम से समस्या को पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षित एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव से संबंधित कई सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती है। इनमें सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन, दवाइयां, जांच, रक्त की व्यवस्था, भोजन तथा अस्पताल आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा शामिल है। इसके साथ ही जन्म के बाद बीमार नवजात शिशुओं को भी 30 दिनों तक मुफ्त उपचार, दवाइयां, जांच और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बाद में इस योजना का दायरा बढ़ाकर एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसके साथ ही जन्म के बाद बीमार नवजात शिशुओं को भी 30 दिनों तक मुफ्त उपचार, दवाइयां, जांच और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी महिला या शिशु आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहे। ये योजना सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम की प्रमुख सुविधाएं हैं निशुल्क प्रसव सुविधा, मुफ्त दवाइयां और जांच, निशुल्क रक्त उपलब्धता, अस्पताल में भोजन की व्यवस्था, मुफ्त एम्बुलेंस एवं परिवहन सुविधा, नवजात शिशुओं का निशुल्क उपचार। ये कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सुन रहे हैं आप मैगजीन कार्यक्रम सुरभि, मैं हूं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुरभि देवजानी के साथ, और इस आखिरी गीत के साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं लेती हूं इजाजत। 297.6 मीटर्स यानी 1008 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर हर दिन लेकर आते हैं हम कार्यक्रम सुरभि दिन के 12 बजे। 20 मिनट के इस सफर में हमारे साथ होते हैं चर्चा है और पहल जैसे सेगमेंट्स और कुछ गीत भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

living in a cloudy world.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

0: जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन।
0: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karmayogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees would contribute to the nation's progress and that their work and decisions would play a key role in realizing the vision of Viksit Bharat. In Rajasthan, employment fairs were organized in Jaipur, Jodhpur, Ajmer and Bikaner, where appointment letters were distributed to more than 1,100 youths. Railway Minister Ashwini Vaishnav attended the state-level Rozgar Mela held in Jaipur. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that recruitment for more than 1,60,000 posts in the railways is currently underway, with over 4 crore candidates participating in the process. He said that earlier, recruitment procedures used to take several years to complete, causing delays for job aspirants. However, with the introduction of the annual recruitment calendar system, efforts are now being made to complete the process within a fixed time frame.
2: Railway mein aaj kareeb kareeb 1 lakh.
3: Work is currently underway for approximately 1,60,000 recruitments. You must be aware that previously, recruitment used to come out once every 8 to 10 years or once every 4 to 5 years. That was the era of the Congress during the time of the UPA. When Modi ji took responsibility, he compressed that time, and after that, some time ago, an annual calendar system was introduced and a clearly defined timetable was made.
2: Annual calendar ki vyavastha ki.
1: In Punjab, the 19th Rozgar Mela was organized at two places, including Rail Coach Factory RCF Kapurthala and Patiala Locomotive Works Patiala today, where appointment letters to 281 new beneficiaries were distributed. At RCF Kapurthala, Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Puri, while presiding over the program, said that the Rozgar Mela has become a powerful national institution which ensures transparency and merit-based time-bound recruitment.
4: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री 4.0 जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स मशीन लर्नर्स लर्निंग इंजीनियर्स क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। इंडिया इज प्रिपेयरिंग आवर यंग पीपल to provide leadership in that area.
1: Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Information and Broadcasting, L. Murugan, has said that the government is committed to realizing the vision of

0: Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization WHO has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavlin Nikam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है. बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें. श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग

0: देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन

0: आनों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2-21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্জ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল, শিল্পী ব্রজেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রাগ ভীম পলশ্রী। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন নবারুণ দত্ত এবং হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্জ মিডিয়াম ওয়েভে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 53 সেকেন্ড। এখন খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचेता चैनल है 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप जुड़े हैं कार्यक्रम उर्वशी के साथ। आज शनिवार है तो शनिवार के हर शनिवार आप सुनते हैं कार्यक्रम मोहिनी उर्वशी के अंतर्गत, और आज की मोहिनी है मीना कुमारी। 5:20 आप जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। बात करते हैं अदाकारा मीना कुमारी की। हालांकि 1972 में 38 वर्ष की आयु में उनका असामायिक निधन हो गया। मीना कुमारी ने हिंदी सिनेमा से सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं। अपनी पहचान स्थापित कर ली थी उन्होंने बहुत ही कम उम्र में। उनकी भूमिकाओं की प्रकृति और पर्दे पर उनके भावों के कारण उन्हें ट्रेजेडी क्वीन, त्रासदी की रानी कहा जाता था। संगीत की दृष्टि से उनके अधिकांश जो हिट गाने हैं लता मंगेशकर, गीता दत्त ने गाए। प्रेम गीतों से लेकर उदास धुनों और शास्त्रीय संगीत से प्रेरित रचनाओं तक, इन गानों में काफी विविधता थी। बेशक मीना कुमारी ने गीता दत्त जैसे कि साहब बीबी और गुलाम में नजाओ सैया, या फिर आशा भोसले काजल में तोरा मन दर्पण कहे के साथ ही हिट गाने दिए, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें लता जी की आवाज से ही पहचानते हैं। लता मंगेशकर द्वारा गाए हुए अनगिनत गीत जो उन पर फिल्माए गए, अधिकांश गीत संगीत की दृष्टि से सफल रहे। वहीं कुछ गीतों में मीना कुमारी के गायन या नृत्य प्रस्तुतियों से गहरा प्रभाव छोड़ा। 1952 में रिलीज हुई एक फिल्म बैजू बावरा लता मंगेशकर की क्लासिक रचना महान नौशाद ने की थी, जिन्होंने राग की रचना राग भैरव को कलिंगदा के तत्वों के साथ मिश्रित किया। शकील बदौनी ने पंक्तियां लिखी और वो पंक्तियां थी, मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया, आवन कह गए अजहू न आए, लीनी न मोरी खबरिया। ज्यादातर मीना कुमारी पर फिल्माया गया है, इनमें जो एक फ्लैशबैक दृश्य में जो है भारत भूषण है। फिल्म का साउंडट्रैक शास्त्रीय रागों के उपयोग के लिए जाना जाता है। कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी।

मीना कुमारी को त्रासदी रानी, त्रासदी की रानी बनाने के पीछे इन गीतों का कहीं ना कहीं एक अवदान तो है। 297.6 मीटर था, 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है। आप जिस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वो है उर्वशी के अंतर्गत मोहिनी। 5:27 लता जी की एक और उत्कृष्ट कृति, इसे शंकर जयकिशन ने राग असावरी में संगीतबद्ध किया था। मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया एक बेहतरीन गाना। शैलेंद्र ने लिखा था, शुरुआती पंक्तियां थी, रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का है मेला। जी हाँ, दिलक मंदिर का ये गीत सुनेंगे आप। कार्यक्रम है मोहिनी, आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। शैलेंद्र के बोल को संगीत से सींचा शंकर जयकिशन ने।

वाकई समय एक इनकी जो ख्याति के आगे रुक ही गया। 5:32 आप जुड़े हुए कार्यक्रम उर्वशी के साथ, और आज मोहिनी में हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। शैलेंद्र की पंक्तियां अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, वो मंजिल है कौन सी ना वो समझ सके ना हम। हर जगह संगीत प्रेमियों द्वारा गुनगुनाई जाती है। शंकर जयकिशन ने अद्भुत बैकअप गायकों का उपयोग करते हुए संगीत तैयार किया, और एक बार फिर मीना कुमारी की अभिव्यक्तियां जो हैं, उनके जो इमोशंस, उनके जो रिएक्शंस हैं, शानदार थी। गाने में राजकुमार भी नजर आए थे। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल को शंकर जयकिशन ने संगीत से सींचा। 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई।

एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे शामों में हम जब भी मीना जी की बात करते हैं तो बस एक ही बात जो खटक जाता है वो ये कि इतनी कम उम्र में और इतनी ज्यादा ख्याति। 5:38 और मीना जी मीना कुमारी पर फिल्माए हुए गीतों की बात आज हम कर रहे हैं। एक गाना जो संस्करणों में दो संस्करणों में था, रफ़ी ने प्रदीप कुमार के लिए और लता जी ने मीना कुमारी के लिए गाया था। रोशन ने मारू बिहाग में अपनी रचना प्रस्तुत की और साहिर ने एकल पंक्ति मुखड़ा लिखा, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दोनों संस्करणों में रात और आई शब्दों का जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया गया। कार्यक्रम है मोहिनी, आपके साथ हूं मैं संचिता। 5:38

बहुत सी ऐसी अनकही बातें रह गई। 31 मार्च को महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी हिंदी फिल्म उद्योग की त्राशती रानी चल बसी थी, जिन्होंने न केवल फिल्मों में दुखद भूमिकाएं निभाई बल्कि वास्तविक जीवन में भी एक दुखद जीवन जिया। उनकी प्यारी यादों में उन गानों की अगर सूची बनाई जाए तो बहुत सी हैं, जिनमें से कुछ चुलबुली रोमांटिक भावुक अदाएं दिखाती हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो स्क्रीन में अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल बांध कर रखती थी। उनकी प्रशंसा करने के साथ साथ उनके भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। ऐसा ही एक गीत जो कि 1962 यानी 1962

की फिल्म साहिबी बी और गुलाम, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, ये उनका एक और मशहूर गीत है। दरअसल इस गीत और पिया एसओजीओ में के बीच कड़ी टक्कर है। पत्नी छोटी बहू की भूमिका में उनका अभिनय जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में एक है। उसी फिल्म का एक गीत गुरुदत्त ने बनाए और इस गीत को लिखा शकील बदौनी ने हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम साहिब बीवी और गुलाम।

297.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। 5:48 आप जुड़े हुए कार्यक्रम मोहिनी के साथ और हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की।

1957 यानी कि 50 और 60 के दशक में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली अदाकाराओं में से मीना कुमारी अव्वल नंबर पर रही। इस फिल्म में जिसके गीत आप सुनने वाले थे, उन्हें पहली बार एक हल्के फुल्के किरदार में देखा गया, त्रासदी की रानी से। बदलाव के तौर पर वो खुलकर रोने के बजाय एक दमदार अंदाज में दिखी।

फिल्म को देखने पर लग रहा था। फिल्म का नाम है मिस मैरी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत, रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज। रजिंदर कृष्ण ने गीत के बोल लिखे और हेमंत कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

कार्यक्रम मोहिनी का आखिरी गीत, एक प्रतिष्ठित गाना जिसे ना सुनाओ तो मीना कुमारी का ये जो लंबा सफर है करियर का वो अधूरा रह जाएगा। एक नर्तकी के किरदार को निभाया गुलाम मोहम्मद ने, भूप और कल्याण राग का उपयोग करके संगीत प्रदान किया और मुख्य आकर्षण अभिनेत्री के चेहरे के भाव, लता की शानदार गायन, कोरियोग्राफी, दो लड़कियों द्वारा नृत्य और ड्राइविंग कहरवा ताल। जी हाँ, यही है इस गीत की यूएसपी। कैफी आजमी ने लिखा ये गीत, लता मंगेशकर ने गाया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, पाकिजा की वो यादगार गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की घोषणा थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर

0: और संस्कृत में समाचार सुनिए।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे एबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च IPL 20-20 क्रिकेट क्रीड़ा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। संपूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मंत्रालये, गृह मंत्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालये, उच्च शिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मंत्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसितभारतस्य निर्माणाय सङ्कल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतनवृत्त्यावसराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20,000+ भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्म योगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramuchtaba.

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। वक्त है कार्यक्रम दर्पण का। दर्पण कार्यक्रम का पहला पायदान एक नजर। आज है 23 मई और हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्चुला, यानी प्रसूति फिस्चुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रसूति फिस्चुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस विनाशकारी पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली प्रसवकालीन चोट के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना और समर्थन जुटाता है। 2026 में आज ही के दिन मनाया जा रहा है ये दिवस, जिसका विषय है स्वास्थ्य एक अधिकार है, फिस्चुला और प्रसव संबंधी चोटों को समाप्त करने के लिए निवेश करें। प्रसव संबंधी फिस्चुला प्रसव नालिका और मूत्राशय या मलाशय के बीच एक असामान्य छेद होता है, जो समय पर चिकित्सा देखभाल न मिलने के कारण लंबे समय तक चलने वाले और अवरुद्ध प्रसव के परिणाम स्वरूप होता है। ये मुख्य रूप से विकासशील क्षेत्रों की हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है। मौजूदा मामलों के उपचार की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देना, मातृ स्वास्थ्य देखभाल की वकालत करना और आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुंच के माध्यम से भविष्य में होने वाली चोटों को रोकना। प्रसूति फिस्चुला को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पृष्ठ के माध्यम से वैश्विक पहलुओं और आधिकारिक बयानों के बारे में अधिक जान सकते हैं हम इस दिवस को मनाते हुए। UNFPA के अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्चुला उन्मूलन दिवस पोर्टल पर जाने की संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष प्रभावित महिलाओं को सम्मान दिलाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। किसी भी महिला या लड़की को प्रसव संबंधी फिस्चुला की पीड़ा सहन नहीं करनी चाहिए। प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं के कारण उत्पन्न होने वाली ये भयावह स्थिति दर्द, अलगाव और अपमान का कारण बनती है, जबकि इसे पूरी तरह से रोका और इलाज किया जा सकता है। इस वर्ष का विषय, जैसा कि आप जानते हैं, उसका स्वास्थ्य उसका अधिकार, फिस्चुला मुक्त भविष्य का निर्माण एक शक्तिशाली सत्य को रेखांकित करता है। प्रत्येक महिला और लड़की के स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है, विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का, और प्रसूति फिस्चुला का निरंतर अस्तित्व उस अधिकार को स्पष्ट उल्लंघन करता है। फिस्चुला को समाप्त करने से मातृ स्वास्थ्य और समग्र कल्याण में सुधार होगा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। फिस्चुला में मुक्त भविष्य बनाने के लिए हमें महिलाओं और लड़कियों को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना होगा। उच्च गुणवत्ता वाली व्यापक देखभाल सभी का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति

आय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, प्रभावी और समावेशी समाधान महिलाओं के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होने चाहिए, विशेषकर उन महिलाओं पर जिन्होंने फिस्चुला से उबरकर सफलता प्राप्त की है। उनकी आवाजें अधिकार आधारित और सांस्कृतिक रूपों से संवेदनशील नीतियों और सेवाओं को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पीड़ित महिलाएं और जागरूक नेता एक साथ आते हैं तो वे कलंक को चुनौती दे सकते हैं, भेदभावपूर्ण मानदंडों को तोड़ सकते हैं और वास्तविक स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे प्रसूति फिस्चुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत एक नजर वार्ता यहीं पर समाप्त होती है। आगे बढ़ेंगे साप्ताहिकी के साथ, साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिक। साप्ताहिकी संकलित किया है नुपुर तिवारी ने।

नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व एड्स टीकाकरण और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के विषय में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के पारिस्थितिकी यंत्र और प्राकृतिक जीवन की रक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, जैविक विविधता के संरक्षण के महत्व और आवश्यकता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर मनाया जाता है। भारत विश्व के 17 सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर है और ये 9वां सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी समृद्ध जैविक विविधता के लिए जाना जाता है और 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में 1,00,000 से अधिक पशु प्रजातियों और 55,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान से भी समृद्ध है, जो भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के प्राचीन ग्रंथों में अंकित है। आइए अब रुक करते हैं उच्च रक्तचाप दिवस की ओर। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उच्च रक्तचाप के महत्व के बारे में बताना, गंभीर चिकित्सा जटिलताओं के विकास में उच्च रक्तचाप के प्रभाव को समझाना और रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जानकारी प्रदान करना है। उच्च रक्तचाप को मुख हथियारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण हृदय संबंधी कई विकार जैसे कि स्ट्रोक, हृदय विफलता विकसित हो जाते हैं। इसके कोई भी लक्षण या संकेत दिखाई नहीं देते। इस वर्ष 2026 विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें, इस मुख हथियारे को हराएं। ये विश्व लोगों, समुदायों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य प्रणालियों के एक साथ मिलकर काम करने के महत्व को प्रकाश डालता है। आइए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है। ये दिवस

0: विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सन 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। इस विषय पर पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि
1: हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है, उसके पास समय की कम है, व्याकुलता जैसी है कि बहुत समय नहीं देता है। तो इस केस में इस तरह के जो विचारिक और परिवर्तन आ रहे हैं उनमें हम इन युवाओं को आकर्षित करने के लिए दो तीन लेवल पे काम करने चाहिए। एक होता है जूनियर लेवल पर, जब स्कूल में बच्चे होते हैं उनको हमें गौरवान्वित महसूस करने के लिए उस धरोहर के बारे में इतना पढ़ाना चाहिए, इतना उसकी बातों को स्टोरी में बताना चाहिए कि वो बच्चे, और उनको हैंड्स ऑन कराना चाहिए, उनको उन स्थलों पर ले जाकर के टाइम स्पेंड करें। जैसे हम हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है तो एक दिन ऐसा विषय होना चाहिए उस स्थलों पर ले जाएं और वहां से कला संस्कृति और अपने संस्कृति के बारे में, धरोहरों के बारे में लोग चर्चा करें, वहां पिकनिक मनाएं, स्पेंड करें। जब तक इस तरह का जो उनका कनेक्शन नहीं बनेगा, तो अपने पूर्वजों के बारे में जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो लोग उसको महसूस नहीं करेंगे। जब उनके क्रियाकलाप में वो दिनचर्या में वो आ जाएगा तभी वो बच्चे सीख सकते हैं। तो इसको कहते हैं इनकलकेट करना, वो उनके अंदर वो चीज भावना पैदा कर देना। तो वो भावना जो है गौरवान्वित करने की भावना तभी पैदा होगी जब हम उनको बचपन से सिखाते जाएं कि इसी तरह से जब हमारे बड़े बूढ़े कहेंगे नहीं आज का दिन हमारा किसका है कि हम अपने पूर्वजों के समाधि पे जाएंगे, अपने पूर्वजों के महल में जाएंगे और वहां पर हम उनको देखेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे।
0: आइए अब रुख करते हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की ओर। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस या एचआईवी टीकाकरण जागरूकता दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन उन हजारों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को याद करता है जिन्होंने सुरक्षित और प्रभावी एड्स दवा खोजने की प्रक्रिया में योगदान दिया था। साल 1998 में पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते दौर में एड्स के खिलाफ जंग में नए लक्ष्य तय किए जा रहे थे। पहले विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर अगले दशक के भीतर एड्स का वैक्सीन विकसित करने की चुनौती को स्वीकार किया गया था। साथ ही ये भी तय किया गया था कि इस खास दिन का मकसद लोगों को एचआईवी की रोकथाम और एड्स के वैक्सीन के रिसर्च के बारे में शिक्षित करना होगा। एड्स को सबसे खतरनाक बीमारियों में शुमार किया जाता है। एड्स का संक्रमण धीरे धीरे शरीर के इम्यून सिस्टम को क्षति कर देता है। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके बारे में एक जानकार चिकित्सक ये बताते हैं,
2: बर्डन है कि किसी भी पेशेंट को यदि हम बोलते हैं या किसी भी लोग को बोलते हैं कि आपको रोज दवाई लेना है तो परेशानी का सबब बन जाता है, तो जनरली लोग तैयार नहीं होते। तो हमारे साइंटिस्ट दुनिया भर से लगे हुए हैं इसके ऊपर रिसर्च करने में, और अभी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ART के ऊपर काफी काम हो रहा है। अभी हाल ही में लॉन्ग एक्टिंग PrEP के ऊपर काम हुआ है, एक ऐसा इंजेक्शन आया है जिसको क्लिनिकली अप्रूव भी कर दिया गया है देशों में, भारत के अलावा, जो कि 6 महीने में यदि एक इंजेक्शन लिया जाए तो वो PrEP के रूप में, जो मैंने बताया प्री एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस के रूप में काम, जो कि अभी सामान्य रूप से उतना उपलब्ध नहीं है, बहुत ही जल्दी जो सिचुएशन है उसमें नॉर्मल मार्केट है उसमें अवेलेबिलिटी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जीन एडिटिंग अप्रोच भी चल रहा है जो कि फ्यूचर में HIV रोकथाम और इलाज को काफी सरल बना सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च अभी चल रहे हैं और HIV को लेकर के बहुत सारी हाई अप्रोच संस्थाएं जो हैं ग्लोबली और भारत में भी काम कर रही हैं। फ्री HIV टेस्टिंग जो कि ICTC में उपलब्ध है, फ्री ART सेंटर में जीवन भर फ्री आपको दवाइयां मिलती हैं, वहां पे आपका CD4 टेस्टिंग जो कि बहुत जरूरी है, वायरल लोड टेस्टिंग, इसके अलावा जो प्रिवेंशन के उपाय हैं जैसे कि कंडोम्स या STI ट्रीटमेंट, और मैंने जो बताया कि डेडिकेटेड मर्डर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के ऊपर भी काम चल रहा है, उस पे भी लोग काम कर रहे हैं। और ये सरकार के द्वारा ये सारी सुविधाएं स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस टू रूरल हॉस्पिटल, PHCC लेवल पर भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जो हायर सेंटर है उनके सैटेलाइट सेंटर्स भी भारत सरकार के द्वारा काफी सारे चलाए जा रहे हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे शहर के तमाम गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी। फिर मिलेंगे हम अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम साप्ताहिकी के साथ थे आप। आगे बढ़ते हैं एक जरूरी घोषणा के साथ, लेकिन सबसे पहले
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अब एक जरूरी घोषणा। 136वीं डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 17 जून 2026 को पूर्वाह्न 11:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए। और ये डाक या ईमेल आईडी, लेकिन उससे पहले एक बार पता फिर से नोट करें, श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि कस्टमर केयर, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए। ईमेल आईडी है cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pgwb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1 जून 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपयुक्त जो भी निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक

0: एक दो शून्य पांच शून्य शून्य पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये घोषणा यहीं पर समाप्त होती है। और इस घोषणा के बाद हम बात करेंगे कुछ गीतों की।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: सात बजकर 52 मिनट 297.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज पर कार्यक्रम दर्पण के साथ जुड़े हुए हैं आप। आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ, किशोर कुमार की आवाज, दाग है फिल्म का नाम। साहिर लुधियानवी के बोल को संगीत से सान सींचा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
2: आज क्या है

दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते ये गीत रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में। अगले कार्यक्रम की घोषणा थोड़ी देर में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:30:42 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा हफ्त रोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां आपके रेडियो मेजबान अयाज अहमद रोहवी के।

साथ। ये प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी दस्तियाब है, या फिर मोबाइल फोन पर संचेता चैनल टैप करके ऑनलाइन रेडियो पर यह प्रोग्राम सुना जा सकता है।

मौजूद सामीन, सबसे पहले आप अपने इस रेडियो मेजबान अयाज अहमद रोहवी का पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। प्रोग्राम की शुरुआत जनाब खुर्रम शहजाद खुर्रम के इन अशार के साथ के कहकशां के बारे में मेरी जान सोचा कर, कहकशां के बारे में मेरी जान सोचा कर, किसके रहम पर है ये आसमान सोचा कर, रंग फूल खुशबू और बाग ही ना देखा कर, रंग फूल खुशबू और बाग ही ना देखा कर, किस तरह उगाता है बागबान सोचा कर।

0: सामीन, अभी आप आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर समाअत फरमा रहे हैं हफ्रोजा उर्दू प्रोग्राम कहकशां अपने मेजबान अयाज अहमद रोहवी के साथ। अब बारी है शाम अफसाना का। इस उनवान के तहत इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जनाब रियाज दानिश से इनका अफसाना कॉफी की प्याली।
1: प्याली पलंग के सरहाने अड लेटे

अंदाज में कमलेश सर झुकाए बैठा है और उसकी बीवी माला पायताने बैठी उसके चेहरे पे छाई मुद्दनी को बगौर देख रही है और घर एक नामालूम सन्नाटे से ग्रामबार है, जैसे किसी तूफान की आमद आमद हो। तुम्हें क्या लगता है, ये सारी बातें सच होंगी? जब बहुत से जो बोझल पल यूं ही खामोशी में गुजर गए तो माला ने इस्तफसार किया। क्या कहा तुमने? कमलेश, जो अब तक बुद्ध की तरह बेहिसो हरकत लग रहा था, माला के गैर मुतवक्को या फिर मुतवक्को मगर अचानक किए गए सवाल पर चौंक पड़ा। यही कि जो बातें सुनने में आ रही हैं, क्या वो सही मानों में सच होंगी? माला ने एक मुहिम सी उम्मीद के साथ कमलेश को देखा। कमलेश की नज़रों ने भी माला के चेहरे का तवाफ किया तो उसने पाया कि माला ने अपने किए गए सवाल के लिए पहले ही से एक जवाब तजवीज़ कर रखा है। मगर ये कैसे मुमकिन था कि वो वही कहता जो माला ने सोच रखा है? मगर माला से सच कहना भी उसके बस के बाहर था, इसलिए उसने सांप मरने और लाठी ना टूटने वाला रास्ता इख्तियार किया। शायद सच हूं। एक लम्हे में माला का चेहरा फक हो गया। सवाल की जिस डोर से उम्मीद की पतंग बंधी थी वो कट गई, मगर फौरन ही लफ्ज शायद ने एक नई राह दिखाई और वो जो एक पल कबल खुद कटी पतंग की तरह बेसमत लग रही थी, उम्मीद की डोर से बंध गई। शायद सच हो, शायद गलत भी। यकीनी और गैर यकीनी के दरमियान पंडोलम की तरह डोलती माला ने कहा। उसे लगा था माला उसकी बातों से सही नतीजा अखज कर लेगी और सच कहने की खलिश से उसे मुक्ति मिल जाएगी, मगर जब उसे इसके आसार दिखाई नहीं दिए तो उसने मजीद खोद पेच की बजाय सीधी राह अपनाई और कहा, किसी खुशफहमी में ना रहो, वो सारी बातें जो सुनने में आ रही हैं वो अफवाहें नहीं हैं, बिल्कुल सच हैं, कड़वी कसैली। लम्हों ने अपने सफर में पड़ाव डाला और सब कुछ थम सा गया, ठहर सा गया। माला की गोद में सर रख के कमलेश आंखें बंद किए लेटा है और माला उसके बालों में धीरे धीरे उंगली फेर रही है। वो लोग वक्त के कैसे नुक्ते में खड़े हैं जहां हालात की नदी मुखालिफ समत में बह रही है। खुद अपनी ही औलाद, माला जो शायद अब एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी ने कहा। कमलेश ने आंखें खोलकर माला को देखा और कहा, खुद अपनी ही औलाद। और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मजीद कहा, खुद अपनी ही। आखिर तकलीफ अपनों ही से तो होती है, लोग धोखा अपनों ही को देते हैं और धोखा भी अपनों ही से खाते हैं। अगर वही सब हुआ जो सुनने में आ रहा है तो फिर हमारा क्या होगा, माला ने रूहानसा होकर कहा। अब हमारा कुछ होना बाकी भी है भगवान। कमलेश का यह अंदाज था, जब उसे माला पे बहुत प्यार आता या फिर उसे बहलाना चाहता तो वो उसे भगवान कहकर मुखातिब करता और माला भी खुद को भगवान कहकर मुखातिब किए जाने पर अपना सारा गुस्सा सारा दुख यकबार की झाड़ देती। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो, आज इतने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से भगवान सुना तो जीने का एहसास जाग पड़ा। मैं तो तुम्हारी गोद में सर रखने के साथ ही इस एहसास से भर गया था, देखो दिल कितने जोरों से धड़क रहा है। ये कहकर कमलेश ने माला का हाथ अपने सीने पर रख लिया। हाँ, अब जीने का एहसास ही रह गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं माला, इसलिए जिंदगी का रोना ना रो और जो सच्चाई है उसे मान लो। तो क्या इस फ्लैट पे हमारा कोई अधिकार नहीं? पूरा अधिकार है। अगर सुधीर ने इसे बेचने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मान लो ये फ्लैट बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे? क्या सुधीर अपने साथ हमें भी अमरीका ले जाएगा? अगर ऐसा होता तो फिर अब तक हम यहाँ, खैर छोड़ो, अब भगवान की धरती इतनी छोटी भी नहीं जहाँ एक बुढ़ा बुढ़ी को आसरा न मिल सके। जब अपने ही घर के दरवाजे हम पर बंद हो जाएं, तो हम किसके घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे? दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे ही किसी घर में रहेंगे जहाँ दरवाज़ा ना हो। कमलेश ने छेड़खानी की। इस उम्र में भी तुम्हारे मजाक करने की आदत गई नहीं, माला ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आदत तो आदत है, इसका उम्र से क्या ताल्लुक? अब देखो, इस उम्र में भी तुम्हारे हाथ की काफ़ी वैसा ही मज़ा देती है जैसा दिया करती थी। क्या कॉफ़ी की इच्छा हो रही है? माला ने मुशफ़िकाना अंदाज में कमलेश की ठोरी पकड़कर कहा। तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी तो मैं नर्क में भी पी सकता हूँ। ठीक है, तो बनाए देती हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी। चलो अब गोद से सर उठाओ। माला जब कॉफ़ी बनाने के लिए जाने लगी तो कमलेश ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं कॉफ़ी? हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें कॉफ़ी ड्राइंग रूम में पीने की आदत है। अब देखो, नर्क में ड्राइंग रूम होता भी है कि नहीं? अपनी ही बातों से माला के चेहरे पे सुर्ख लहर आई, इन लहरों में उछलते कूदते कुछ मुस्कुराते पल। कमलेश कदम आईने के सामने खड़ा है,
जहाँ उसे अपना अक्स की बजाय गुजरे हुए

वे पल गुजरते दिखाई देते हैं। वह अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। उसका बाप एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क था। रहने के नाम पे शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा फ्लैट था। बाप की आमदनी ज्यादा तो ना थी, लेकिन औलाद को ऊंची तालीम देने के सपने जरूर देखा करता था। फरमाबरदार औलाद होने के नाते वो इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ था। कहते हैं हुनार बरवा के चिकने चिकने पात। स्कूल ही के जमाने से उसने अपने सालाना नतायज के जरिए यह जता दिया था कि आने वाला कल उसका है। इधर तालीम मुकम्मल हुई, उधर नौकरी का परवाना मिल गया। अब जो फिक्र इस मुतवस्त खानदान को आ घेरी वो कमलेश की शादी थी, मगर हाथी लाने से कबल तो उसके रखने का इंतजाम करना पड़ता है। कमलेश की शादी में जो सबसे बड़ी रुकावट नजर आ रही थी वो उसका छोटा सा फ्लैट था, जो बढ़े हुए खानदान के तसव्वुर के साथ ही सिमट कर मुट्ठी भर का हो गया था। ऐसे में उसके बाप ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली और अपनी उम्र भर की कमाई उसके सामने डाल दी। उसने भी अपनी उम्र भर की कमाई के बल पर बैंक से कुछ रकम कर्ज ले ली और इस तरह शहर से ज़रा फासले पर उसे माकूल कीमत पर एक माकूल सा फ्लैट मिल गया। जगह बढ़ी तो ख़ानदान भी बढ़ा और माला उसकी ज़िंदगी में आ गई। माला में एक सुखड़ बीवी बनने के सारे गुण थे। आते ही सारे घर को ऐसे संभाल लिया जैसे घर की बहू ना हो बेटी हो। फिर सुधीर की पैदाइश सारे ख़ानदान के लिए एक हसीन हादसा था जिस पर सारा घर गिरा कर हंस पड़ा। दिन रात उसके माता पिता सुधीर के पीछे लगे रहते, माला को उसकी परवरिश के गुण सिखाते। सुधीर का बचपन कैसे बीता उसे कुछ याद नहीं। उसे ये भी याद नहीं कि सुधीर ने कब अपने लड़खड़ाते कदमों से चलना सीखा। उसे तो सुधीर के चलने का एहसास उस वक्त हुआ जब वो घर की दहलीज को और फिर बाद में हर दहलीज को पार कर गया। एक बार जब सुधीर घर की दहलीज को पार कर गया तो ये एहसास ही ना रहा कि उसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सुधीर के कदमों की रफ्तार नापने में सर्फ हो गया। और इस धुन में कभी वो जान ही ना पाया कि कब उसके बाल खिचड़ी होने शुरू हो गए और कब उसके माता पिता जिंदगी के सफ़र में उसका साथ छोड़ गए। बस कोई बात उसके जहन में साफ साफ है तो यही कि माता जी की मौत के बाद जाने क्यों उसे लगा कि उसकी माँ माला के रूप रेखा में आन बसी है। ठीक वैसे ही जैसे पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने खुद के अंदर पिताजी को जन्म लेते हुए देखा और उसने महसूस किया वो पहले से ज़्यादा जिम्मेदार बन गए। आ जाओ कॉफ़ी तैयार है। वक्त की बहिमाना चाल, आईने के चेहरे पे खराश, यादों के तसल्लुत में दरार। कमलेश डाइनिंग टेबल के करीब रखी कुर्सी पे बैठा है, कॉफ़ी की छोटी छोटी चुस्की ले रहा है और माला पास ही खड़ी उसे इस उम्मीद के साथ तक रही है कि शायद वो कॉफ़ी के मुतालिक अपनी राय का इजहार करें, मगर वो तो कॉफ़ी के प्याले में यूं गर्क है मानो उसका किसी बातों से कोई इलाका ही नहीं। आखिर जब इंतज़ार की घड़ी मुतवक्को हद को पार कर गई तो माला के लिए लबकुशाई करना नागुजीर हो गया। कैसी बनी है कॉफ़ी? अरे कॉफ़ी की मत पूछो, ऐसी कॉफ़ी पर अपना आप भी खोना पड़े तो घाटे का सौदा नहीं। वो तो मैं देख रही हूँ, काश सुधीर यहाँ होता तो तुम्हारे हाथ की बनी कॉफ़ी पीकर जान पाता कि जो स्वाद उसकी माँ के हाथ की बनी कॉफ़ी में है वो मज़ा अमेरिका की जिंदगी में कहाँ। होता तो साथ ही, पर तुम्हारी ज़िद। मेरी ज़िद? कैसी बात करती हूँ माला, क्या ये मेरी ज़िद थी कि वो अमेरिका में रह जाए, वहीं घर बसा ले? उसने ऊंची पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त चाही तो मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसे अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि भगवान के कर्म से मेरे पास इतना पैसा था कि मैं उसके अमेरिका जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता था। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकते हो, ये मेरी ज़िद थी कि मैं उसे एक वेल एजुकेटेड पर्सन के रूप में देखना चाहता था। क्या हमारे मुल्क में जो लोग ऊंची पढ़ाई करते हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं होते? होते हैं माला, होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो अमेरिका में पढ़े। अब तुम उसे मेरी गलती कह सकती हो, मैंने उसकी ख्वाहिश का मान रखा। अगर उस वक्त तुम भी मेरी तरह उसे जाने की इजाज़त ना देकर थोड़ा सा दुख सहन कर लेते तो आज मायूसी का इतना बड़ा गट्टा तो न धोना पड़ता। वक्त का नारवा सलूक, कॉफ़ी की प्याली में उबाल। कमलेश आम चेयर में बैठा है, माला उसके कांधे पर सर रख के आम चेयर के हत्ते पे बैठी है। क्या मेरी बात बुरी लगी? कमलेश बच्चों की तरह मुँह बसूर कर नफ़ी में सर हिलाता है। तो फिर इतना खामोश क्यों? अब कहने को बचा ही क्या है? ऐसा तो मुमकिन नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी ना बचा हो। तुम तो अकेले ही तस्वीरों से भी बातें कर लेते हो, अब अचानक से तुम्हारी चुप्पी दुखों को और बढ़ा देती, इसलिए चुप ना रहो। माला, तुम्हें शायद पता नहीं, आज किसी भी वक्त सुधीर आ सकता है क्लाइंट को लेकर फ्लैट दिखाने। किसी भी वक्त फ्लैट दिखाने? यानी सुधीर शहर में? हाँ,
वो भी एक हफ्ते से, और हम

0: मिलने तक नहीं आया, क्या उसे इतनी फुर्सत नहीं? उसे कहाँ फुर्सत, वो तो एक ऑफिशियल काम के सिलसिले में उसका हिंदुस्तान आना हुआ है। हाँ हाँ, माँ बाप से मिलने की उसे फुर्सत नहीं, मगर अपने माँ बाप के घर को बेचने की फुर्सत है। क्या मेरी कोक इतनी बुरी थी? तुम्हारी कोक बुरी नहीं है, बुरे हैं हमारे भाग। असच पूछो तो अपने भाग को भी क्यों दोष दूं? असल कसूर तो उस परवरिश का है, हमने ही उसकी ऐसी परवरिश की कि कभी उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास तक ना होने दिया। शायद यही वजह है कि एक बेटा होने के नाते उसका क्या फर्ज बनता है वो जान ही ना पाया। जब भी तो वो हमारे पास आया तो ऐसी हालतों में, जब उसका आना उसकी मजबूरी रहा। दूसरी मजबूरी की छोड़ो, ये घर बेचने की क्या मजबूरी है? किस चीज़ की कमी है उसके पास? भगवान का दिया सब कुछ है, इस घर को ना बेचता तो कौन सी आफत आन पड़ती? तुम्ही ने तो बताया था कि किस मुश्किल से तुमने और पिताजी ने एक एक पाई जोड़ कर ये फ्लैट खरीदा था। उसके लिए ये सिर्फ ईंट गाड़े का बना एक घर हो, हमारे लिए तो यादें, और यादें बेची नहीं जाती। ज़रा याद करो, जब माता जी का ध्यान हुआ था तो पिताजी ने हमें कई बार नहीं बताया था कि उन्होंने आधी रात को माता जी को फ्लैट में इधर उधर घूमते देखा है? और क्या पिताजी की मौत के बाद तुम्हें नहीं लगा कि पिताजी तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे बातें करते हैं, किसी कमज़ोर पल में तुम्हें दिलासा देते हैं? हमने तो सिर्फ अपने पुरखों की चिता को आग लगाई है, वो अब भी हमारी यादों में जिंदा हैं, और ये आज की पीढ़ी उन्हें अपनी सभ्यता का ज़रा भी पास नहीं। छोड़ो बीमारा, तुम भी क्या किस्सा लेकर बैठ गए? कैसे छोड़ दूँ, सारी बातें तरह दी जा सकती हैं, ये बातें तो हरगिज़ नहीं। और फिर तुम इसे किस्सा कहते हो जबकि ये हकीकत है, कड़वी कसैली, ठीक उस कॉफ़ी की तरह जिसे तुमने अभी अभी ख़त्म की है। अरे नहीं भगवान, इस कॉफ़ी और इस हकीकत में बड़ा अंतर है। आने दो, आज तुम मैं किसी भी हाल में दरवाज़ा ना खोलूँगी, चाहे काल बेल बजाते बजाते उसकी उंगली ही क्यों न दुब जाए। आने दो, दरवाज़ा ना खोलूँगी, किस दुनिया में हो माला? ज़रा देखो उधर, दरवाजे की तरफ देखो, वो खुल रहा है। वक्त की बेवफाई, रह गई बेचैनी, बेकरारी, बेकली, बेकसी, बेचारगी, मजबूरी मजबूरी मजबूरी। कमलेश और माला पति फटी आंखों से फ्लैट के दरवाजे को तक रहे हैं। दरवाज़ा जो शायद बरसों से नहीं खुला है, चूंकि एक आवाज़ के साथ खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही नमूदार होता है सुधीर, और उसके साथ ही वारिद होता है सूट बूट पहना हुआ एक अजनबी। पहले तो सुधीर एक कुचटी सी निगाह इधर उधर डालता है, और फिर अजनबी को फ्लैट दिखाने में मसरूफ़ हो जाता है। ये है बड़ा सा हॉल, ये दाएँ तरफ बाथरूम और किचन, और बाएँ तरफ दो बेडरूम्स, उधर उस तरफ टेरेस, और ये इधर इधर डाइनिंग रूम। अजनबी ने हर तरफ से फ्लैट का मुआयना किया, कई एक जाविये से अपने मोबाइल के कैमरे में फ्लैट की तस्वीरें उतारी, और जब हर तरफ से मुतमईन हो गया तो कहा, मिस्टर सुधीर, मुझे आपका फ्लैट पसंद आया, बस ज़रा मैं अपनी मिसेस से बात कर लूँ। वेल नो मैटर, बस अपने फैसले से आगाह जल्दी कीजिएगा, मुझे तो इनकार की कोई वजह नहीं लगती, फिर भी मशवरा ज़रूरी है। ज़रूर, तो फिर चलें। चलिए, फ्लैट का दरवाज़ा जिस चूँ की आवाज़ के साथ खुला था, उसी चूँ की आवाज़ के साथ अपनी पहली हालत में आ गया। वक्त ने हद फासिल खींची, सन्नाटा रह गया, शोर चल पड़ा। कमलेश और माला मभूत फ्लैट के दरवाजे के पास खड़े हैं, गैर यकीनी हादसे से गुजरे शशुपंच के शिकार। जो हालात उन्हें पेश आ रहे हैं उनसे ना तो उनके लिए फरार मुमकिन है, और ना उनमें सकत है हालात के रुख को मोड़ने की। बस बेबसी की तस्वीर बने सुन रहे हैं आने वाली हस्ती के जाते कदमों की चाप। और मिस्टर सुधीर, आप तो कह रहे थे आपकी माता जी को मरे 4 साल और पिताजी को गुजरे 1 साल हो गए। हाँ, तो आपने एक बात महसूस की? डाइनिंग टेबल पे रखी प्याली, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने रखी हो। हाँ, मुझे भी तो ऐसा ही लगा। मगर इसके आगे सुधीर ने क्या कहा वो लोग सुन ना सके। क्या उसके आगे सुधीर ने कुछ नहीं कहा, या जो कुछ कहा वो कदमों की चाप की नज़र हो गया, या फिर तब तक सुधीर के कदमों ने इतना फासला तय कर लिया कि इस फासले को उसकी आवाज़ ना पाट सकी? गुजरे वक्त के जिन टुकड़ों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया गया था उनमें कमलेश और माला कहीं नहीं थे।
1: सामीन, अभी आप शाम अफसाना के तहत समाअत फरमा रहे थे जनाब रियाज दानिश से, इनका अफसाना कॉफी की प्याली। वाज़े रहे कि अफसाना इससे कबल भी इस चैनल पर नशर किया जा चुका है। अब प्रोग्राम के इस निसफ घंटे के सफर को आगे बढ़ते हुए चलते हैं बरगे ख्याल की तरफ। इस उनवान के तहत इस हफ्ते हम आपकी समातों के हवाले करेंगे राजेंद्र सिंह बेदी, एक तरक्की पसंद मुसन्निफ पर हमारी तफसीली गुफ्तगू। समात फरमाएं। राजेंद्र सिंह बेदी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने

0: की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.

0: in ya afcat.edcil.co.in par.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप की गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा

0: पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जीरामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जीरामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, एल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार

0: और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभिभाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है, तो इसलिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे

0: इर्द गिर्द पहुंचते हैं। और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चले गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम आसानता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना

0: है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
2: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका

0: और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चरित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे

0: सक्सेसफुली प्रसारित करना ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे योगी है, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहां से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: के बीच का आपसी संबंध है, ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने के वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निबे ग्रुप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस परियोजना से अहिल्यानगर जिला रक्षा विनिर्माण केंद्र बन गया है। इस दौरान निबे ग्रुप और इसराइल की एक कंपनी के बीच समुद्री विमानों और ऑप्टिकल उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्याउन काउंटी की ल्यूशेन कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की मांग की है। साथ ही कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खनन हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने लापता सभी लोगों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस कड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस ने इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर के फ्रांस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने कहा कि यह कदम गाजा जा रहे समुद्र बेड़े पर सवार कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है। श्री बेरोट ने यूरोपीय संघ से बेन ग्वीर पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है। इसराइल के सुरक्षा मंत्री का पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो सामने आने के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कंबोडिया में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 श्रमिकों की मौत हो गई और 93 अन्य घायल हो गए। पहली घटना कंबोडिया के काबोंग छनांग प्रांत में हुई, जहां एक भारी मालवाहक ट्रक श्रमिकों को कारखाने ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया। इस दुर्घटना में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। दक्षिण पूर्वी प्रांत वे रिंग में एक अन्य दुर्घटना में कारखाने के श्रमिकों को ले जा रही एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेन के सूमी शहर के बाहरी इलाके में रूस के ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के रूस नियंत्रित इलाके के स्टारोब्लिक्स में एक कॉलेज के छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई में हुआ। स्टारोब्लिक्स में 11 लोग मारे गए थे। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा रात भर रूस पर किए गए ड्रोन हमलों में एक रूसी तेल टर्मिनल में आग लग गई, इसमें 2 लोग घायल हो गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल व्यापार निवेश CEPA वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक

करेंगे। इस दौरे का मुख्य केंद्र बिंदु भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वार्ताओं का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। इस दौर के दौरान वार्ताओं का एक और दौर सोमवार से शुक्रवार तक ओटावा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता सार्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्य करती हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गोबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गोबार्ड ने कहा कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद ये फैसला लिया गया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गोबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रशासन को उनकी कमी खलेगी। सुश्री गोबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उप निदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोफ से, वहीं 67 किलोग्राम भार वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा खनोफ से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।

भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।